तुमरी गत अमित तुमही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हराए, श्री हर कृष्ण त्याईया जिह डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावै ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख तलाई देख वाही देख के अनरिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सिह दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाई, तेरे पाले नूं मिठा करके मन्निया, तना प्राचीन ते वर्तमान समय दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तहतां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै, चेतावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के पित्र दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। हे नमाणियां दे मान सतगुरु, नेताणियां दे तान सतगुरु, गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज, जिन्हां गुरधामां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। पातशाह संध्या वेले आपदे पित्र हजूरी अंदर सुंदर दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवाना विच सोधारा राज साहब दी पावन गुरबाणी दा जाप होया, आरती आरती दे कीर्तन होए, गुरमत विचारां होईयां, गरीब नवाज पातशाह आपदी पित्र बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं कई गलतियां भुल्लां हो जांदियां, अणजाण बच्चे समझ के माफ करना गां वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न सुण दा बल बख्शणा, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराईआं संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा, अपने चरणी लाउणा, अपने दरों घरों नाम दीआं दातां बख्शिश करके सतगुरु कृतार्थ करना, बेअंत संगत आपदे चरण परसरी है सच्चे पातशाह, सेवावां भिटावां रस्तां अपने चरणां च दर प्रवान करनियां, चढ़दी कला नाम दी दात बख्शिश करनी, सतगुरु आप जी दे दर घर दे सेवादार सरदार हरपाल सिंह संधु वीजे वास्ते बेनती करदे हन, पातशाह विघणा दा नाश करना, सेवक दी अरदास मंजूर करके सेवक दी झोली खुशियां नाल भरनी, बीबी जस कौर बीबी जसप्रीत कौर खंडे बाटे दी दात दी जातना करदे ने, गरीब नवाज पातशाह कृपा करके खंडे बाटे दी पौल बख्शिश करनी, परिवार दीआं आसां बेनतियां प्रवान करनियां, बीबी जसपाल कौर सेखों मन दे मनोरथां वास्ते घर दी सुख शांति चढ़दी कला तंदुरुस्ती सेवा सिमरन नाम दीआं दातां मंगदे आपदे चरणां च बेनती करदे ने, सुरगवासी सरदार मोहन सिंह भट्टी जी दे परिवार वालों उन्हां दी प्यारी मिठी याद विच अरदास बेनती कीती जा रही है, सतगुरु विछड़ चुकी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शिश करना, परिवार को भाणा मन का बल बख्शना, परिवार में सुख शांति चढ़ती कला, समूह भट्टी परिवार माता महेंद्र कौर जी वालों अरदास बेनती सतगुरु प्रवान करनी, गुरमुखा वालों आपदे खजानों में माया आदर की गई है सच्चे पातशाह चढ़ती कला बख्शिश करनी, पातशाह आपकी हजूरी च पंचम कड़ाह प्रसाद की देख सजा के हाजर दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण की आग्या बख्शिश करो, सतगुरु जी पित्र हुक्म की दात बख्शिश करो, जो जी आपदे दर आवै सुराजी होके जावे, सही गुरु के प्यारे मिलने जिन्हां दे मिले आपदा पित्र नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, दोहरा आग्या पहिया काल की तबै चलायो, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੋ।

अंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हो कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मुलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुण नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो।

बेद औसत करिए सिद्ध साधिक तेतीस कोर तीर की मना परिय सिद्ध साधिक।

पनमत रह कछ पेद नहीं, गुर अर्जन प्रत्यक्ष हर। तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर, पनमत रह कछ पेद नहीं, गुर अर्जन।

सोग अगन तिस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरभउ नाम जपु हर रंगे पार तन दुख किश पाप ना फेड़ै जम जंदार न आवै नेड़े पर तन दुख किश पाप न हेड़े जम जंदार न आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां कर बारवां एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने तख्तां ते विराजमान हो के जो समुची मानवता नूं सांझा उपदेश बख्शिश कीता वो पवित्र उपदेश पंजवें पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन रसना तो उचारण होया तनासरी राग का शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र अंग 683 उत्ते सवायमान है। सतगुरु कृपा करन अपने दसे हुए अरस आसे मुताबक सानू जीवन ढालन की दात बख्शिश करन। पातशाह जी का कोटान कोटान शुकर है जेडे अमृत वेले की दात सानू बख्शिश करते ने अपने चरणों में हाजरी भरन का वक्त देंदे ने अपनी कीर्ति करन का वक्त देंदे ने। ये वाहिगुरु का वड्डा परपकार है साडे उत्ते। सतगुरु ऐसी कृपा बनाई रखन गुरु दरबार में हाजरी भरन वास्ते हाजर होई संगत का दिल दियां गहराइयां विचों धन्नवाद। साडे कोलों सेवावां निभाउंदियां कोई जाने अणजाणे विच गलती हो जाए सूखम गलती हो जाए रब रूप गुरु कीआं संगतां बख्शण योग ने बख्श लैणा। जियो आया आप जी नूं जियो आया सतगुरु घर परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला रखण। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकार मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच

0: अनंगीय नामे समस्ती स्वरूप कलंकन बनाने कलंकी स्वरूप नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं अच्छे दिये पे दिये नामं कामं तेरा जोर जाजरी छन जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं
1: प्रभु है अजू है देश है अपेश है
0: भुजंग प्रयात छंदे गाते बाते आनंदी स्वरूपे नमस्तुं निर्नाते नमस्तुं परमाते नमस्तुं काले नमस्तुं पाले।

एक मूरत नेक दर्शन कीन रूप अनेक देव देव न जाने जे बेद और कतेब सात मातना जात जाकर जन्म मरण विहीन लोग चौदे के बिके जग जाप ही जे जाप परम रूप नीत मूरत पूरन पुरखा पार कालहीन कला सुन।

0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र दानी
0: चाचरी छंद ना सतराय ना मित्राय ना परम ना पितराय
1: ना कर्म ना काय जन्म
0: ना चित्राय ना मित्राय परे है पवित्राय
2: भगवती शांत है प्रसाद कतते क्या चिज दे से क्या बिज पे से
3: कंज करने के आज पर
2: क्या बिज लोके के आदित सोके
3: तूत भरने के प्रभूत करने
2: राज प्रभा है के धर्मंग तुझा है
3: अशोक भरने के सर्वा पर
2: जतरंग करती है के शतरंग क्षत्रि है।

0: प्रजापति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जर जर संग नूप तंग सरंग सवारे
1: कोट रंग कुरंग से कुदल पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पजां के पुपली बिदन्यावत शीश न जात बिचारे
1: एते पए तो कहा पे पुपते अंत को ना गई पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिसान को बाज तोल मृदंग निगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के

0: साहिब संसाई प्याले
1: दीन बंधु संत के हंता तुम हो पुरी चतुर दस्तंता
0: काल पाए ब्रह्म भवतर काल पाए शिव जुगवतर
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल।

0: सगरी सृष्टि खाय अचंभवा जुगात स्वरूप से अंभव दुष्ट उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता पुरख चवन पक परे ते हारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: ताके काल निकलनी आए
0: रक्षा ताए सब काला दुष अरिष्ट रे तत्काला
1: ताके ताप निक मार
0: रिद्ध सिद्ध कर मोह सब होई दुष छाछ सके न कोई।

0: बगरियम बजग माता गंस्कर पूरन सबराता
1: किल बिक सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता
0: से जब दे दियाला पूरन ग्रह गंतत काला
1: मन बाछत फल पावे सोई दुख नच से बे आपत।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया पाया मत गुर के पाकी नी सच्चा मन वसाया।

0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे
1: तां सन्मुख से कोई जियो रहे गुरु नाले।
0: गुरु के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा समाले।
1: आप चट सदा रहे परने गुर मेरे अवर न जाने कोए।
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
1: जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे।
0: भावे मुक्त न होते कोई पुछो विवेकिया जाए।
1: अनेक जूनी भर में आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए।
0: फिर मुकत पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए।
0: आवो सिख सतगुरु के प्यार।

0: माता के उधर मैं पितपाल करे सो क्यों मनो
1: विसारिया
0: जिसनु अपने लिव लावे कह नानक वरदाता सो क्यों मनो विसारिये
1: जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया
0: माया अगन सबे को जय करता खेल रचाया।

0: सर्व समय सब को प्रतिपारे।
1: पोखत हैं जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे। दाहत हैं दुख दोखन को दल दूजन के कर के दूजन के पल में दल डारे। पार न पाए सके पद्मापत वेद कतेब अपेद उचारे। कीट पतंग कुरंग पुजंगम पूत पविख पवान बनाए।

0: सुरत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पतले है रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बो पांत बचावे राखत है अपनों कर दे कर पाप सबू ना पेटन पावे जच पुजंग सुदान अवदेव अपेव तुम्हें सब ही कर त्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत है बेद बतावे नारद से चतुरानंद से रू नारक से सब हूँ मिल गायो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो
1: मन में जेको अमितोज सबे जग शायो।

न रंग न साक न शोक न संग तिहारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रतारे देश फिरो कर फिर तपोतन।

0: हाथ पुरख अवगत अविनाशी लोक चतुर्दश लोक प्रकाशी अदेवल पुरख अवगामी सकट कट के अंतर जामी
1: रूप अछे अनपेखा राग रंग जय रूप नरेखा
0: आद पुरख देव अवकारा
1: जात न पाता सदर मित्र जय तात न माता
0: सबते दूर सभनते नेरा जल थल महियल जाए बसेरा
1: नाद वाणी जन सांजे बस्त पवानी
0: ब्रह्मा विष्ण अंत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो
1: निंदर उपिंदर बनाए ब्रह्मा रुद्र पाए खुपाए
0: लोक चतुर्दश खेल रचायो बहुर आप ही बीच मिलायो
1: देव निंद पारा गंधर्व जच रचे सुबचारा
0: पूत पविक पुमान कहानी कट गड़ के पढ़ पढ़ की जानी
1: जात न पाता एक रंग का हो नहीं राता
0: सर्व ज्योत के बीच समाना सबु सर्व ठोर पहचाना
1: रतन काल स्वरूपा लख पर का विगत अवधूता
0: जात पात जे चेह न बरना अवगत दे अच्छे अन परमास सबन को करता रोग सोग दोखन को हरता एक चित जे

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा
0: देव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा
1: गुरुदेव सांसद बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा
0: सरोवर गुर ज्ञान मचन परंपरा
1: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: देवाद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उद्रा
1: गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी।

0: हार ब्रह्म सरनाई।
1: चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई।
0: सतगुर पूरा पेटिया जिन बंत बनाई।
1: राम नाम ओख दिया एका लिवलाई रहाओ।
0: राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई।

जन नानक गुरमुख जो नर खेलै सो जिन बाजी कर आया पौड़ी। वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा।

चरण कमल जा का मन रापै, सोग अगन तिस जानना व्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपौ नाम जपु हर रंगे, पर धन दोख किश पाप ना हेड़े, जम जंदार ना आवै नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरण आई, पर तन दोख किश पाप न फेड़े, जम जंदार ना आवै नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरण आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान कृपा की है, अमृत वेले सतगुरु की पित्र हजूरी च सुंदर दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवाना विच गुरु घर दे हजूरी रागी सत्कारयोग भाई प्रेम सिंह जी बंधु हजूरी रागी सिंघां ने बड़े प्रेम विच आसा जी दी वार दे कीर्तन सानू सरवण करवाए। वाहिगुरु कृपा करन जथे विच प्यार तफाक चढ़दी कला सतगुरु बख्शण संगत वालों दासां वालों जथे दा धन्नवाद। गुरु दरबार विच हाजरी परनवाइयां संगतां नू जीओ आया, सतगुरु तुहाडे ते कृपा करन उदम दी दात बख्शण। इसे तरह हाजरी भर के साहब दे घर दी आप जी खुशी प्राप्त करदे रहो। शनिवार ऐतवार अमृत वेले 3 बजे तो 4:30 बजे तक संगती रूप अंदर सुखमनी साहब जी दे जाप हुंदे ने, उस तो बाद नेम शुरू हुंदा है। जिन्हां गुरमुखां कोल वक्त होवे सच्चे पातशाह दे चरणां च हाजरी भर के गुरु महाराज जी की खुशी प्राप्त करिया करो। वाहिगुरु कृपा करन आई हुई संगत का एक बार फिर धन्यवाद। गलतियां भुलां दी खिमा बख्शिश करो। गुरु का लंगर चल रहा है, अपनी अपनी इच्छा मुताबिक गुरु का लंगर छक के गुरु की खुशी प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।